अच्छा जी, सुडटांग वाला, वानी वाला, वजीरिस्तान वाला, यो कुछ कम ने ताऊ स्टडीज ज्यादा रख ली और नन ताऊ तो बिल्कुल नेटवर्क ओपन दे नुकसो को मैसेज को वल गवाड़ी कॉल को वल गवाड़ी बिल्कुल जी मुंगसर रात लेशी और इंसान कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम की मुंगसर बरखा गिस्से लेशी नो नंबर 0335 435 3515 बांधे सुबह बिल्कुल जी राजे और मुंगसर बदे इसना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम के बरखाख ले पलावास अल्पाज दुआन रासरा दवानी सखी वजीरिस्तान सखी बिल्कुल जी शरीक वाले शेखा

अच्छा जी नो वाने वाला टांग वाला परुन बहुम की दिशी सासु मैसेज सासु कॉल सिकम दी रागली हुआ आखो बस सदा बद मरगा संगीत चितासु तो पता हुआ चिदा नेटवर्क दलता के आगे शानकार नको नेटवर्क स्टेबल नो बल द इंटरनेट डे रिजाता इशू हुम हुआ होता सुधा हुब्याम दास चिकम दे प्रोग्राम शिवे हुआ नूरु इलाकों तक चिकम दे बिल्कुल जमुंगा का प्रोग्राम हुम नू शिवे

बिल्कुल इसमें कॉस्मेटिक सुमरा हो प्रोडक्सी हर जी की तरफ अवेलेबल दी पासा नहीं सरा हर कॉस्मेटिक जनस स्टोर की तरफ पासा नहीं सर अवेलेबल दी खजी मुंगा प्रोग्राम बिल्कुल अनेर दे जुलमी रेडियो नौशेरा बानी ऑल दे के सुमरा एरियाज दी टूल एरियाज के तरफ द इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिले वीगी देने लवा मुंगा प्रोग्राम अनेर दे उम्मीद रेडियो चार सदे बाने हम नो दारंगी चार सदा वर्ष वर्षरा मरदान पेखवर हर जी की तरफ इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अवेलेबल दी हर कॉस्मेटिक जनस स्टोर की दारंगे मुंगे बिल्कुल अनेरियो आवाज एफएम अटक रेडियो बने हम नौ तस्ता द अटक वर्ष सर नूर सुमरा एरियस दी चागा द अटक रेडियो आवाज हो रहे देखेगी नो हर जगह तस देश में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलेगी हर कॉस्मेटिक जन स्टोर के पास नहीं सरा दारंगे बिल्कुल मुंगा अनेरियो करक रेडियो बने हम इन्हें करक रेडियो द स्टोरी ने बिल्कुल द प्रोग्राम की 88.4 ना नो बिल्कुल करक के अंबेरी खिला और दिल नथमर वर्ष वर्षरा सुब्रह एरिया जी हर जगह तस्वीर अवेलेबल दी अंबेरी खिला दारंगे बिल्कुल बनो के हम मंगल मेला डुमेल वर्ष वर्षरा बनो सुमरा हम बाजार दे हर कॉस्मेटिक जनसुर के तस्वीर बात नहीं सुना मिले वीगी देश में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और वर्ष वर्षा मुंगा लकी रेडियो बने हाँ चुकुम दे अनेरियो 88.0 बांधे नौ आगे बने हम मुंगा अनेरियो दारंगी तस्वीर बिल्कुल हर कॉस्मेटिक जनसुर के पास नहीं सुना पर लकी मरवत की मिले वीगी और दिन लवा टांग रेडियो बने हाँ नेरियो बिल्कुल नौ पर टांगे हाँ दस हर जगह की अवेलेबल दी इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दिन लवा दस डी हान ग्लोबल 91 रेडियो बने हाँ प्रोग्राम आने दे नौ डी हान की हाँ दस हर कॉस्मेटिक जनरल के पास नहीं सरा देश में प्रोडक्ट मिलेगी और दिन लवा चर तक नमी लवेगी और नुता सुमुखता वेलिशी और दिन लवा कंपनी हेल्पलाइन नंबर बने हाँ कॉल कबुलिशी पर 0342 311 22 92 नंबर बने कॉल जरूर कब अवल हो माशाल्लाह इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट शुगम दी हर गुड गुड तरह से दिली दी हर जगह तरफ से अवेलेबल दी ओके ब्याह हम चर्त के न मिलेगी नो कंपनी हेल्पलाइन नंबर बने कॉल जरूर कब आप 0342 311 22 नंबर बने कॉल जरूर कब अच्छा जी देने लवा मतलब तसु कम दुकानदार ना कम कॉस्मेटिक दुकानदार ना तसु प्रोडक्ट अखले नो आगे एड्रेस मुंगसरा जरूर प्रोग्राम के शरीके वे वजह दादा छे अलते की बदा से नूर हां मीन वालवी चागा देश में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अखिसल वाड़ी नो आगे तो बपत नहीं शरा मुंग एरिया के मुंग इलाके की दसे कम यू कॉस्मेटिक दुकानदार दे चागे सर देश में प्रोडक्ट मिलेगी नो आगे एड्रेस मुंगसरा जरूर शरीके वे छे आगे एड्रेस मुंगा प्रोग्राम के शरीके हो सके छे आगे लगी के बड़े मीनवाल प्रोग्राम और दे छे माने नो आगे प्रोडक्ट वाइज अखिसल वाड़ी नो चागे तो हम पतो लगेगी शरा मुंग एरिया के हम मुंग कि हम चुकम दुकानदार दे कॉस्मेटिक दुकान दे दे सरा देश में प्रोडक्ट मिलेगी खजे मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन माने मुंगा प्रोग्राम अनेर दे और दिन लवा था हम मुंगसरा पति प्रोग्राम की कॉल के बलिशी मुंगत मैसेज के बलिशी और कॉल को दोपहरा द्वारा नंबर था सो वे मा दी द्वारा नंबर बने था प्रोग्राम की लाइव कॉल के बलिशी और नंबर दर वे मा नंबर दे 0345 933 2580 यानी कि 0345 933 2580 दे नंबर बने हाँ कॉल कबल मैसेज कबल और दिन लो बल नंबर दे 0331 52 65 340 यानी कि 0331 52 65 340 अवल को तासो पता माँ प्रोग्राम फॉर मेड दास दे सुन हम इन वाले आगे तटी रजिया तो मुकवर गो मजे चाहिए पकपल माने प्रोडक्ट इस्तेमाल हुई चागा मुंग तो फेदे वर के हुए छे इसमें के दे कम प्रोडक्ट इस्तेमाल ले कम प्रोडक्ट को फेदा वर खड़े दा और दिन लाओ ईजल ब्याह हम दादर दबे में शेखराम से दे इनाम से दे बिल्कुल प्रोग्राम दो पर रेडी दे हो नेटवर्क चुकम दे कारण के पे खबर की सिग्नल चुकम दे बन कर इशू दी नेटवर्क बिल्कुल कारण की नो दे वजना अगावा प्रोग्राम था जिकल नेटवर्क ठीक सी बहाल सी नो इंशाल्लाह प्रोग्राम तो बड़े जर रजी सईदा नो नेटवर्क वजह बने प्रोग्राम तो मतलब प्रोग्राम ना दे गैब दी नो इंशाल्लाह डेजर बरजी सईदा अच्छा जी सो अवल चुकम दे यू नजर लक्षण दे पो मैसेज बांधे चुमा चिचाओ द कम देना मुंगता मैसेज कड़े बिया बागीना बासा सुकॉल पत्र ब्रजमा

0: हाँ जी मैसेज कर दिया, सलाम और तारिक भाई कैसे हो, मैं जीनत बनो पीपल से, इश्मा जिंदाबाद डे रजिया तो मनाना, बिल्कुल इश्मा जिंदाबाद यो जहान बनाने को देन लो छे, सलाम भाई संग सलमोना फातमा कैनात और टूलू था इस्लाम वीरी दी रफिया वजीर मैसेज कर रही था सो डेरा डेरा मनना छे मैसेज वो को दीन लवाच मुक्त मैसेज कर दी खजी दिन लवा सिमामा मैसेज करी था थोड़ा डेरा जाता मैंने कहो खजी टाइम चुकम देरा सरा खत्म शुभ दी और कद चा मैसेज पाते छो नो अब हफकी की ना सकी प्रोग्राम के सरा टाइम डे ज्यादा कम दे मामू जान प्लीज मैसेज प्रोग्राम में शामिल करो खजी दादा सो मैसेज में शामिल हो मां वो टाइम उस दे खत्म शुभ दिन लवा चामु तो मैसेज करी दे खजी बेची अस्सलाम वालेकुम संग ए खै प्रोग्राम डे रे जबरदस्त से वो कॉल में मिलाव न छो आई एम खुशी खान खटक दे रजी तो ना कॉल बिल्कुल नंबर डे ज्यादा 20 दे तो वजह मिलाव न छो टाइम दे रसर खत्म बिल्कुल इश्मा हर बुलाए चुकम दे कम ऑफर मन लगे दिले जरूरी चुकम दे इस्तेमाल की मुख्तलिफ फायदे दो पर बीमारी दो पर आगे दो पर कार की माशाल्लाह और दिन ओबल लगे ऑफर ओ बांध लगे दिले ठीक था नो अब कम खुशकिस्मती अहवालात पते सीधे कम दिचा नाम पके राशि पो इश्मा ड्रा की नो कम कस्टमर या कम मीनवाल चुकम दे इश्मा हर बुलाए प्रोडक्ट अखली ठीक दादा इश्मा हर बलाई लखनी नो आगे पो डकन बाने यो ऑप्शन भी मतलब डकन चुकम दे बने ऑप्शन बने मौजूद भी आज जरूर रखे वही पल नाम और नंबर और इलाके मतलब नाम के ना दुकानदार से जमा के वही ठीक था नो बस सलाह दू की तासु नाम चुकम दे पो ड्रा की राशि नो भी बतासु उम्र इंशाल्लाह जरूर लेगी द हर जिले नंबर चुकम दे यो मीनवाल चुकम दे आवाज जरूर चुकम दिलेगी सही था मिस जी से वही खा सही था खजी सही था देन अलवा मरदान और देनो शहर चुकम देखे ना ऑलरेडी आगे शिवी दी टिकता लगा ड्रगाने शिवी दी कुछ बाकी बाकी चुकम जिली दी आगे ड्रगाने नहीं दी शिवी नो आगे मीनवाल चुकम दे इश महर बलाल जरूर हिस्से शी और दिन लवा चुकम टोका नहीं आगे जमा कबल शी खजी टाइम देखते शिवी इश्मा सुमरह प्रोडक्ट सी हर जगह तरफ अवेलेबल दी चर तक नमें लगेगी कंपनी हेल्पलाइन नंबर बने कॉल जरूर करें 0342311292 टाइम देखो खत्म शिवी नेक्स्ट प्रोग्राम की बदल सकी यूजर मुलाकात तेरे पर
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.1.
2: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us. You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल आयल कुदरत का इलाज सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है जैसा कि मैदे की तेजबियत जलन बदहजमी बोक की कमी कब्ज दिल और गुर्दों की तकलीफ जोड़ों और पट्टों के दर्द सर दर्द मुंह के चाले ये सब तकलीफ अब खत्म क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद इश्मा हर्बल आयल कुदरत का मुकम्मल इलाज हर दर्द का आसान हल
4: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क
5: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
4: 88.4 FM
6: जुवाना बिया सोचुनो के नास्ते खुदे दे खेर कड़े
7: रफी जानी जड़ में खफावी वाण मची आवाज नास्तुम द जवन में जरूरत और शवे देर परेशान आयम
6: ओहो परेशान के गेवले दा खुद द टेंशन डिप्रेशन और एंजाइटी लामात थी
7: रफी जानी दास्त शेवी
6: خوراک نکول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ زیړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
7: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا؟
6: الشفا دواخانا سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319-5523-404.
8: Radio Aman.

जी दोस्तो, सराइकी प्रोग्राम विच साडे खामोश कालां तक रहंदन, लेकिन खामोश लिसनर एडे सारे बहु सारे हिन के जबरदस्त बोविन गाला करना कर ज्यादा सारे खामोश लिस्टर हिन साडे प्रोग्राम को पसंद करेंदन। सब कर पहले कुतुब कलोनी चुन नजरदीन उस्ताद आखेंदे के सराइकी प्रोग्राम फूलां दी चंगेर या सराइकी खुशबू या खबर है संदर है सुहार आला प्रोग्राम ही होंदा है के जी आल मिक्स होंदा है, यानी के इन दे विच प्रोग्राम तो सराइकी है, पश्तो गाने उर्दू पंजाबी सराइकी सब कुछ सा को मिलदा है, तो ए प्रोग्राम असा को बहुत पसंद है। शुक्रिया नजरदीन उस्ताद, तेरा बड़ा शुक्रिया। इन नाल मुलाजिम रनवाल परदेसी आखेंदा है कि ए प्रोग्राम सुहार आला प्रोग्राम सबको बड़ा मजा देंदा है, क्योंकि इन दे विच हर किस्म दा सबको गाना मिलदा है, जेरी फरमाइश करे ने ते असा को गाना मिलदा है, चाहे पश्तो है उर्दू है पंजाबी है सराइकी है, ते साडे फरमाइश पूरी थींदी है। अच्छा ए होसी के इन दा प्रोग्राम दा टाइम ज्यादा की तवांजे कि सारा दी फरमाइश पूरी थी वन, प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है। मुलाजिम दुकानदार बिरा बड़ा शुक्रिया, बहुत खुश रहा मैं आबाद रहा मैं प्रोग्राम को पसंद की थी। इन दे नाल नाल गरा शबाज ही चू, यानी कि रणवाल शबाज आला ना कुलाची आला शबाज गरा शबाज अब्दुल हादी साहब आखेंद है कि सराइकी खुशबू नेमतुल्ला तेरा ए प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इन्दी पश्तो ते ये बिल्कुल ए भी उन दू आंगू गाल की थी अब्दुल हादी ने कि पश्तो उर्दू सराइकी जेरा गाना सा मंगने साको अगर साड़ी एक दफा काल लग वेंदी है तो साको गाना मिल वेंदा है, साको गाना असा सुन दिया चा। बड़ी मेहरबानी अब्दुल हादी साहब, अल्लाह खुश रखी आबाद रखी, हमेशा खुशियां हुए अपने बच्चों के नाल आबाद हुए, प्रोग्राम को खुश की थी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। दोस्तों आसू प्रोग्राम की तरफ, सराइकी खुशबू दे पासू खबर है संदर है, तुसा काला कर सकते वे अपनी फरमाइश डाल सकते वे, लेकिन एक ही पहले सारे दे नामे एक गाना लाना सारे लिस्टनर दे नामे या कॉल करना लेन या खामोश लिस्टनर इन खामोश बह के सुन देन, ते खासकर मुलाजिम दुकानदार परदेसी दे नामे एक गाना जो आवाज जुबैदा खान अमदी ए

0: जी 09635114888 साडा कॉल नंबर है, तुस भी आ सकदे, अपनी फरमाइश दा इजहार कर सकदे वे। कॉल आंदी पई मैं दसोणा मिठा बिरा कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल कट गई है, मायूस न थी वे, वत कॉल करे कॉल मिल वैसी बिया बिरा आंदा पिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एफएम रेडियो टांक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एफएम रेडियो टांक, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, नेमतुल्लाह राय साहब।
0: जी जी, कौन मैडम मीठा?
1: ठां खुला लेंदे आदमी बर्बाद थींदे तेरे नंबर से मिलावन ते ही तो प्रोग्राम बूम मिलता है आदमी का दिल नहीं मने दा कि नकर चा नहीं मिलता उसका नहीं मिलता।
0: खुशियां खुशियां होनी खुशियां होनी। पश्तो स्पीकिंग ही वे
1: जी
0: वाया जार दसो कुर्बान दसो दगा मीना मोहब्बत भी दे तासो लक इंतजार से डेरा खंदा डेरा मीना दा
1: यार पकी खतर तो आयु।
0: जी जी
1: ये बुदा गाना बजाना ना ता मई लस डेर खंद के
0: अल्लाह दे कदर का अल्लाह दे कदर का कदर मन से पा खुदा ग्रान से खुदा दे हारा यो समा का पहाड़ मोर से दे खुशल ऐसे।
1: आमीन आमीन। बात खो डेर खबर बनक जगह से नूर खलक मा होने बाजाफ तड़ी जी
0: जी जी
1: गाना तब लगो लादे खाकसार पावास
0: खाकसार
1: जे खाकसार जे पदी दनुनो पाबंदी वाला के दला अवल बकला कला दरवाजे के दरे दला याद सनाना पावास हम दगा गाना सकत कुवल बंदे सीखा सवे लगावा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बवा लगाओ चा यार दोस्त सलाम चाहता को सलामुना वाला जा माता को सलाम रा वाला जा
1: हर चा तम सलामुन दी अल्लाह दे हर चो खुशहाल रही अल्लाह दी महंगाई रख की अल्लाह
0: आमीन हालात आमीन आमीन
1: अल्लाह पाक दे दा ते सदगर्दी दा शयान दे खुदा गुण रख की अल्लाह दे हर चो खुशहाल
0: आमीन अल्लाह दे खुला बख्तवार का खुदा दे दा दुआ कबूल का डेरा मनना डेरा मनना डेरा मनना। जी जबरदस्त आवाज जबरदस्त अलैंदा पे प्यार मोहब्बत इजहार की है ता पश्तोला दोस्तों तू सको मैं पहले के पश्तो प्रोग्राम से रह की खुशबू है लेकिन मैं नाल प्यार मोहब्बत पश्तो वाले करेंदन आओ ए पश्तो दा गावन रल के सुन दिया।

0: आपका मसला हल हो जाए। हो सकता है कि आपको उसके लिए चेकअप का समय जीरो है। इस वक्त रेडियो अमन FM 88.4 टांकी और ये प्रोग्राम अल शिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट चौक टांके ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद सेहत के उसूलों को जानना है और तमाम इंसानों का सेहतमंद रखना है। इस प्रोग्राम में आप कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ हकीम सैयद मशकूर अहमद जो कि पिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पे टांग में अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट में जो है आपके लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होते हैं और मरीजों का मुआयना करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी किस्म का मसला है, बादी बवासीर है, खूनी बवासीर है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर, दमा, असाबी कमजोरी या किसी भी मसले का अगर आप शिकार हैं और आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में कोई मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में मैं आपको जो है हमारे जो नंबर्स हैं जिन पे आपने रब्ता करना है वो आपको बता दूंगा, तो उस पर भी आप रब्ता कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है मैं अपने मेहमान सैयद हकीम मशकूर अहमद साहब की तरफ मुतवज्जा होऊंगा और उनको प्रोग्राम में बिस्मिल्लाह और खुशामदीद कहूंगा। अस्सलामु अलैकुम हकीम साहब, क्या हाल है जी? अल्लाह का एहसान है हकीम साहब, दिन अच्छा गुजरा
1: जी, अल्लाह का फजल है, दिन काफी बेहतर
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे कि आप जो है लोगों के बारे में इतने फिक्रमंद रहते हैं और रोजाना जो है आप आते हैं, अच्छे अच्छे तिब्बी मशवरे भी देते हैं और लोगों के मसाइल भी सुनते हैं। तो अल्लाह ताला
1: उसके लिए ऐसा है ना सब के ये प्रोग्राम है अवेयरनेस पे,
0: बिल्कुल
1: आगाही पैगाम है, तो उसमें यही होता है कि यार हम छोटी छोटी चीजों से अपने वजूद को फायदा दे सकते हैं। तो आप एक पैगाम पहुंचा रहे हैं सेहत से मुतल्लिक, आगाही दे रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है कि
2: किसी को मालूमात मिले और वो उस पे जो है फायदा उठा सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। चूंकि हकीम साहब कहा जाता है कि सालिक का एक शेर भी है कि तंगदस्ती ना हो सालिक तो तंदुरुस्ती हजार
2: नेमत है। बिल्कुल, मिर्ज़ा ग़ालिब ने कहा था कि वाकई अगर तंदुरुस्ती ना हो ग़ालिब तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ये बात सही है कि
0: बिल्कुल ईमान एक बहुत बड़ी नेमत है,
2: बिल्कुल है,
0: लेकिन ईमान के बाद अगर देखा जाए तो सेहत सबसे बड़ी दौलत है।
2: बिल्कुल, खुदा की एक नेमत है और उसके हम जो आप दे भी हैं।
0: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो इसका हमें जवाब भी देना होगा। हकीम साहब आपने बहुत ही अच्छी बात की। और हकीम साहब जैसा कि अब कल बारिश हुई
2: जी जी,
0: आंधी भी चली है
2: जी,
0: उससे जो है मौसम में तब्दीली आ गई।
2: बिल्कुल ऐसा
0: मौसम
2: ही है।
0: ने जो है वो अंगड़ाई ले ली है,
2: हाँ
0: जो है सर्दी की तरफ हम गामजन हैं।
2: बिल्कुल, करवट तो बदली है मौसम ने और अब सर्दी की आमद आमद भी है। वैसे भी ये देसी महीना तो अस्सू का था गालबन में भी, क्या लास्ट में ही है
0: जी जी।
2: या कते चढ़ जाएगा तो उससे फर्क पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: और उससे हमारे वजूद की ये छोटी मोटी जो, हाँ स्टार्ट में जरूर हो सकता है गले खराब, नजला, जुकाम, खांसी, लेकिन उसके बाद ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मौसम चेंज तो लाता है फिर हमारी बॉडी में।
0: बिल्कुल, वैसे हमारी सराइकी में भी एक कहावत है
2: जी
0: कि असु असाला दी को गर्मी, रात को पाला।
2: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
0: दिन को जो है काफी गर्मी पड़ती,
2: गर्मी होती है, रात ठंडी हो जाती है,
0: रात ठंडी हो जाती है। और चूंकि हम मैदानी इलाकों के रहने वाले लोग हैं तो मौसम जैसे ही तगैर आता है, मौसम के अंदर तब्दीली आती है तो हमारा जिस्म जो है, हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से पहले पहले जो हमें सौगात मिलती है वो नज़ला जुकाम की ही।
2: ऐसा ही है, बस पोल्यूशन है, गर्द गुबार, मिट्टी घटा और दूसरा धुएं शुएं, उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ता है। फिर ऊपर से हमारी खुराक, तो ये चीजें मिलकर फिर जाहिर है मर्जों को और ज्यादा फैला देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। डियर नाजरीन समईन, जैसा कि आप जानते हैं कि हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब पिंडी इस्लामाबाद वाले इस वक्त हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में मौजूद हैं, और अगर आपके साथ भी कोई मसला है और आप मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पे राब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपका आरजे, आपका भाई मोहम्मद आदिल सियाल आपकी कॉल लेगा और आपका जो मसला है वो हकीम साहब के सामने हम रखेंगे। हो सकता है कि वो कोई नुस्खे की शक्ल में आपका मसला हल हो जाए, हो सकता है कि आपको उसके लिए चेकअप कराना पड़े, तो ये जो नोयत है ये फिर हकीम साहब खुद देखकर सजेस्ट करेंगे कि आया इसका क्या हल निकालना है। तो अगर आप पीटीसी हेल्प नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो नजरीन सामाइन 09635114588 यानी के 09635114888 पीटीसीएल नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप आपके पास मोबाइल की सहूलत है और मोबाइल पैकेज है और आप मोबाइल पर आप कॉल करना चाहते हैं और अपना कोई मसला पूछना चाहते हैं हकीम साहब से, तो आप जो हमारा जो है मोबाइल नंबर भी नोट फरमा लें, 03195523404 यानी के 03195523404 इन नंबर्स पे आप रابطہ करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हकीम साहब आपकी तरफ में आऊंगा
2: जी।
0: बात चली नजला जुकाम से
2: जी जी।
0: तो जैसे ही नजला जुकाम लगता है तो गले की खराश जो है ये भी साथ में जो है शुरू हो जाती है,
2: ऐसा ही है।
0: इस पर भी बात करेंगे हकीम साहब, एक कॉल आ रही है अगर आप
2: जी जरूर हो तो।
0: अस्सलाम वालेकुम। जी जी आपकी आवाज आ रही है जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
3: अमन रेडियो वाले हो?
0: जी जी रेडियो अमन से इस वक्त हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम।
3: तो मेरी आवाज रेडियो में जाती है?
0: आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आपके साथ कोई मसला है, कोई खांसी कोई जुकाम कोई तो आप
3: सॉन्ग
2: बच्चे
0: शरारत करते हैं। बहरहाल गुजारिश है तमाम सुनने वालों से, चूंकि एक सीरियस प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है और हमारे साथ जो है हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब जो अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं और वो जो है सेहत के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं सेहत के असूलों से, तो अगर आपके साथ वाकई कोई मसला है या आप कोई घरेलू टोटका पूछना चाहते हैं तो उस हवाले से आप जरूर कॉल करें। और वैसे अगर आपने गपशप करनी है तो गपशप के लिए इंटरटेनमेंट के बहुत से प्रोग्राम्स रेडियो अमन पे चलते हैं तो उसमें फिर आप वो कॉल किया करें। हकीम साहब गले की खराश के हवाले से बात हो रही थी, जब नजला जुकाम लगता है तो गले की खराश का अक्सर मसला सामने आता है, इस बारे में आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि क्या करना चाहिए?
2: देखिए उसमें तो यह है कि जाहिर है हमारा माहौल थोड़ा सा ऐसा है कि आबो हवा खराब है, इतनी सही नहीं है, धूल मिट्टी वगैरह, और फिर दूसरा ये मौसम जब चलता है तो ये खुश्की पैदा कर देता है जिससे बाज़ दफा हमारे गले में खराश होगी
0: जी जी,
2: और जैसे कि इन्फेक्शन
0: बिल्कुल
2: गले में दर्द।
0: हकीम साहब आपकी बात को कंटिन्यू रखेंगे, एक कॉल आ रही है, देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह और चौक अकम जी ने जी शोक जी फरियाद और कम जी ना जी जी जी तासो आवाज रजी लग गया था जी, चम मसला था जी तासो जुकाम दादा अच्छा चलो सही था जी, तासो मसला मुझे हकीम साहब तब पेश करूँ चे हकीम साहब चवाई डेरा मनाना जी प्रोग्राम चे तासो शिरकत वकड़ा जी डेरा मनाना जी नजीब साहब हमारे साथ भाई थे, आवाज उनकी काफी कम आ रही थी, लेकिन जहाँ तक मैंने उनके आवाज को समझा तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो है जुकाम है और जुकाम की वजह से मैं काफी परेशान हूँ। जब यानी कि धूप निकल आती है तो उस वक्त तो कुछ न कुछ फर्क आ जाता है, वरना उसके अलावा दिन को और रात को मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ। इस बारे में हकीम साहब जरा रहनुमाई फरमाए।
1: हाँ, अब ये अगर क्लियर कर देते थे कि साथ इनको छींके वगैरह भी आती हैं। नहीं, बहरहाल ये होता है कि नाक की झिल्ली में इन्फेक्शन भी हो सकता है, मौसम की वजह से भी हो सकता है, तो इसका प्रॉपर इलाज तो मौजूद है
0: जी।
1: वैसे कई ऐसे देसी नुस्खे टोटके हैं जो इसमें काम कर जाते हैं, जैसे अदरक और शहद का कावा है
0: जी,
1: वो भी इसमें बेहतर हो जाता है। और दूसरा ये है कि आप इसमें पानी की भाप ले सकते हैं, तो बेहतर तो यह है कि आप अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के दवाखाने पे तशरीफ ले आए तो पता चले कि असल मामला क्या है, कब से है, तो उसके मुताबिक उसकी प्रॉपर उसका इलाज है। और ये इंशाल्लाह दोबारा सीजन में भी नहीं होगा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि जैसे कि भाई ने कहा कि मैं डॉक्टरों के पास जा जाकर थक चुका हूँ, तो इंशाल्लाह ये जो है इसका मुकम्मल इलाज
1: बिल्कुल इसका देसी में मौजूद है और एलोपैथिक से बहुत दर्जे बेहतर है
0: जी। बिल्कुल माशाल्लाह। हकीम साहब, कहा जाता है देखें कि जो देसी जड़ी बूटियों से जो इलाज है
1: जी,
0: वो कहते हैं कि परफेक्ट भी है, बड़े कहते हैं कि वो परफेक्ट भी है और उसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते। मजे की बात तो ये है,
1: ऐसा ही है। देखें, वो दरअसल हम एक नेचर के करीब हैं, एक नेचुरल मिजाज, वो अपना मिजाज भी रखते हैं, एक तबीयत भी है हमारी, हमें जो सूट करेगी वो नेचुरल मेडिसिन ही करेगी।
0: बिल्कुल।
1: और एलोपैथिक है या कोई भी है, वो वक्ती तौर पे तो हमें सपोर्ट करती है, लेकिन अगर कहें तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती उसका हल। इसीलिए जहां तक कोशिश करें कि आप नेचर के नजदीक हों, नेचुरल चीजें हों, तो वो आपको बहुत हद तक आपको फिट रखेंगे।
0: बिल्कुल। हकीम साहब, डस्ट की बात हुई, अभी जब मैं आ रहा था तो काफी डस्ट थे
1: जी।
0: अगर हम लोग कुछ एहतियात भी अपनाएं ना
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: के जैसे कहा जाता है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, तो हम बहुत से अमराज से बच सकते हैं। हकीम साहब, लाइन पे देखते हैं कि इस वक्त कॉल ड्राप हो गई है। बहरहाल, आप दोबारा कॉल करें, इंशाल्लाह आपकी कॉल जरूर प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। जी हकीम साहब, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग जो है डॉक्टरों के पीछे, तबीबों के पीछे तो बहुत भागते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है एहतियात की तो वहाँ फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं।
1: तो सही है
0: जो है ना, यानी कि अब मास्क जो है ये भी हमें इस्तेमाल अगर हम करें तो इससे भी जो है काफी फर्क पड़ सकता है।
1: फर्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है।
0: एहतियाती तदाबीर के हवाले से आप क्या कहेंगे जो मौजूदा?
1: देखिये, उसमें पहली बात तो यही है कि आप अपने खुद एहतियात करेंगे, अगर खुद करेंगे तो आप महफूज भी रहेंगे, आपकी वजह से फिर दूसरे भी महफूज रहेंगे। जाहिर है,
0: बिल्कुल,
1: वायरल होता है, बैक्टीरिया है, एक दूसरे से भी लगते हैं बाज़ दफा। आप अपनी अगर हिफाजत करते हैं तो समझ लें कि आप दूसरों को भी सेफ कर रहे हैं। उसमें यही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके गले में खराश है या नाक से पानी बहना शुरू हो गया या आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, तो आप उस गर्म पानी की भाप लें, नाक को गर्म पानी से साफ करें, अदरक का कावा बना के पिए। तो दूसरा यह है कि बेहतर तो ये भी है कि आप फौरी तौर पे अपने मुआलिज से भी मशवरा कर लें, ताकि वो उसके लिए कोई बेहतर से बेहतर चीज तजवीज कर सके, जिससे आपको सुकून मिले, आपको मर्ज से आप निकल जाएं। तो बाकी अमूमन हमारे जो बुजुर्ग हैं घरों में, वो भी टोटके नुस्खे इस्तेमाल कर देते हैं और वो काफी हद तक असरअंदाज भी होते हैं। तो कोशिश यही करें कि पहले उसे देसी अपने घरेलू इलाज से कवर करें, अगर नहीं होता तो फिर आप मुआलिज से मशवरा करें और उसके मुताबिक उससे उसका हल लें।
0: बिल्कुल।
1: तो इंशाल्लाह मर्ज बढ़ता नहीं है, बल्कि आप उसको शुरू में ही कंट्रोल कर लेते हैं।
0: क्योंकि हकीम साहब, देखा जाए तो जो मुआलिज होता है उसने इसके अंदर काफी स्टडी की होती है, उसके सामने इस किस्म के काफी पेशेंट गुजर चुके होते हैं।
1: सही है।
0: तो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो इलाज होता है वो परफेक्ट और मुकम्मल होता है, और अगर हम अपनी मदद आप के तहत दवाइयां लें, अक्सर लोगों को हमने देखा है कि वो जो है अपनी जो है बाजार से चले गए और खुद अपनी मर्जी से जो है अद्वियात ले ली, तो उससे क्या होता है बजाय ठीक होने के कोई और मसला जन्म ले लेता है। फिर वो जो थोड़े से पैसों से मसला हल हो रहा होता है वो फिर गंभीर शक्ल अख्तियार कर जाता है और फिर वो जो है ना
2: सही है। दरअसल आजकल है इंटरनेट का दौर और अब पहले वाली बात नहीं है। पहले तो चले लोग इश्तिहार देखते थे, किताबें पढ़ते थे, नुस्खे या किसी ने बताए तो चलो पंसारी से ले लिए। आजकल बहुत शॉर्ट रास्ता है, वो इंटरनेट पे जाते हैं, वहां से टोटके नुस्खे देखे। अब उन्हें अपने मिजाज का भी नहीं पता होता कि मेरा मिजाज क्या है, मेरा मर्ज किस स्टेज पे है और मेरे लिए क्या बेहतर है। वो उसी चीज को फॉलो करते हैं जो वहां लिखी होती है, वो लाके इस्तेमाल कर लेते हैं। और कहते हैं ना कि लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। तो चीज ये है कि अगर तो वो उसके मिजाज के मुताबिक आ गई वो नुस्खा तो उसको कुछ रिलीफ मिल गया। लेकिन बाज दफा ये होता है कि वो फिर उसको एक किस्म का कहते हैं कि यार ये गलत था, ये लिखने वाला ही गलत था। तो चीज है कि आप जब उसको इस्तेमाल कर रहे हो आप पहले किसी मुआलिज से मशवरे कर लो,
0: बिल्कुल,
2: तो ताकि आपको आपके मिजाज का और आपके मर्ज के मुताबिक वो उसको गाइडलाइन दे सके कि इसमें क्या चीजें। आपने देखे तिब जो है या यूनानी तरीका इलाज जो है ये वजन पे है। अगर आप एक नुस्खे में वजन को ऊपर नीचे करते हैं, चाहे वो एक रत्ती के बराबर भी हो, तो आपका पूरा नुस्खा डिस्टर्ब हो सकता है, उसका मिजाज तब्दील हो सकता है, वो आपके मर्ज को बजाय कंट्रोल करने के वो हो सकता है उसको बढ़ा भी दे। तो चीज ये होती है कि इसमें सिर्फ वजन है, ओजान को देखा जाता है कि आपने, इसीलिए ये नुस्खे कोई 10 ग्राम, कोई 20 ग्राम, कोई 15 ग्राम, कोई बीच में 1 ग्राम, ऐसी चीजें हैं। तो उसको मैनेज करना होता है, आपकी फॉर्मुलेशन ही है। जब आप वो सेट करते हैं आप मरीज की तबीयत को, उसके मिजाज को, उसकी उम्र को, हर चीज को अकाउंट करते हैं, फिर आप नुस्खा तजवीज करते हैं तो वो उस पर फिर काम करता है। अगर उसमें कोई 19-20 का फर्क आता है फिर वो मुआलिज का फर्ज है कि वो उस चीज को दूर करता है। कि यानी एक मैंने एक मरीज का नुस्खा दिया, उसे पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से उसका हल नहीं हो सका, तो मैं जब मरीज मुझसे आके शिकायत करेगा या बताएगा कि जी मुझे इसमें 10% महसूस हुआ, तो मैं उस पर गौर करूंगा कि अगर ये 10% है तो इसको बढ़ना चाहिए। मैं उसमें कुछ चीजों की ऊपर नीचे उनके वजन को घटाऊंगा, बढ़ाऊंगा, कुछ इजाफा करूंगा, कमी पेशी करूंगा, ताकि उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आ सके। लेकिन जो एक आम आदमी है वो तो जाहिर है वो इस चीज को नहीं जानेगा ना, वो तो या यकदम उसकी डोज बढ़ाने की करेगा और या फिर उसे बिल्कुल बंद करेगा। तो चीज ये है कि आप कोई भी नुस्खा, कोई भी टोटका इस्तेमाल करते हैं, आप उसके लिए बेहतर है कि पहले मुआलिज से मशवरा कर लें। अब यहीं की मिसाल ले लेते हैं टांग की, ये शुआल मार्केट मेरे दवाखाने पे अलशिफा की, कि तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास एक दो आदमी ऐसे भी आ जाते हैं मरीज के, जो लिखा होता है उन्होंने वजन यानी नुस्खा लिखा होता है, तो वो बातें पूछने आते हैं कि आप बताते हैं रेडियो पे कि जी मुआलिज से मशवरा करें, तो हम मशवरा करने आ गए हैं कि ठीक है आप मशवरा करो किस चीज के बारे में। तो जब नुस्खा देखा जाता है तो उसमें बाज चीजें ऐसी होती हैं जिनका वजन कम होना चाहिए लेकिन वो बराबर वजन में होती हैं, तो बाज चीजें फिर उन्हें समझाया जाता है कि ये चीज का जो फेल है वो ये है, इसका मिजाज जो है ये है, इसके वजन को कम करें तब ये नुस्खा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आप हम वजन ना सारी चीजें ले लें,
0: बिल्कुल,
2: वो फिर आपके लिए मसला बनाएगा। तो सो कहने का मकसद है कि आपको कोई भी मसला है आप बिला झिझक दवाखाने पे आके मशवरा कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। मकसद तो है एक अवेयरनेस का, एक आगाही का,
0: बिल्कुल।
2: और आगाही मतलब ये समझ लें कि हमने उसको बताना है कि क्या सही है, क्या उसके लिए बेहतर है, क्या गलत है,
0: बिल्कुल।
2: यही एक मुआलिज का फर्ज है, चाहे वो डॉक्टर है या हकीम है, या होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसका फर्ज यही है कि जहां तक है जो कुदरत ने उसको इलम दिया है या तजर्बा दिया है वो लोगों को बेहतर से बेहतर एक लाइन दे सके,
0: बिल्कुल।
2: तो अल्लाह पाक हमें सबको तौफीक दे कि हम बेहतर से बेहतर काम कर सके
0: बिल्कुल। जी हकीम से बिल्कुल कहा जाता है कि जब तक किसी मर्ज की तशखीस ना की जाए तब तक उसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। जब किसी भी मर्ज की तशखीस हो जाती है तो फिर उस मर्ज का जो इलाज है उसका वो आसान भी हो जाता है और उसके ऊपर जो है खर्च भी कम आता है।
2: खर्च के अलावा खर्च कम आता है, वक्त कम लगता है, मरीज जल्दी इम्प्रूव करता है, उसमें बेहतरी हो जाती है दोनों के लिए, चाहे वो मुआलिज है या पेशेंट है। और जब आप उसकी तशखीस सही कर लेते हैं तो फिर इलाज करना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर तशखीस में कोई कमी पेशी है तो फिर इलाज में भी ताखीर हो सकती है। बिल्कुल,
0: यही वजह है हकीम साहब के अक्सर लोगों को हमने देखा कि लोग कहते हैं कि फलां बंदे ने ये नुस्खा इस्तेमाल किया था वो तो ठीक हो गया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। अल्लाह के बंदे, वो जो ठीक हुआ है तो उसने अपने तबीब से, अपने मुआले से राबता किया, उसका उन्होंने वजन देखा, उसके हवाले से मुकम्मल जो है हिस्ट्री लेने के बाद उसके लिए वो दवाई जो है उनके लिए वो जो है उनको बताई गई कि आपने ये दवाई लेनी है। अब आपका मिजाज, आपका वजन उससे मुकम्मल मुख्तलिफ है और आप उसी की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे फिर फर्क नहीं आता।
2: ऐसे ही है, देखें एक दवाई हर आदमी पे काम नहीं करती, यानी बिल्कुल ऐसा, ये कोई एलोपैथिक नहीं है कि पेनाडोल सारे ही खा रहे हैं
0: और सारे
2: ही दर्द का सर का दर्द ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। बाज दफा पेनाडोल भी काम नहीं करती, फिर एक से दो गोलियां भी बढ़ानी पड़ जाती हैं।
0: बिल्कुल,
2: चीज ये होती है कि एक दवाई कभी भी काम नहीं करेगी, आपको उस मरीज को देखना पड़ेगा, उसके मिजाज को, और उसके मुताबिक फिर आपकी दवाई डोज देनी पड़ेगी, चाहे वो देसी जड़ी बूटियां क्यों नहीं है, कि आप उसकी मिकदार के मुताबिक उसको बढ़ाएंगे, उसकी ताकत के मुताबिक उसे देंगे तो इंशाल्लाह उसको रिलीफ मिलेगा।
0: माशाल्लाह, जी डियर नाजरीन सामईन, ये प्रोग्राम अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नाज ट्रैफिक पॉइंट चौक टांक्स की जानिब से आपके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब पिंडी इस्लामाबाद वाले हमारे साथ मौजूद हैं और वो जो है आपके मसाइल का हल बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, किस तरह जो है आप अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं, किस तरह आप अपने बुजुर्गों को जो है सेहतमंद रख सकते हैं। नाजरीन समाइन, आप याद रखें कि बीमारी जो है वो आती जल्दी है और जाती आहिस्ता आहिस्ता है, तो हमें चाहिए कि बीमारियों से बचने के लिए अपने आप को महफूज रखें। हम अपना पैसा, हम अपनी जो माल दौलत है, हम दूसरी चीज़ों में तो ज़ाया करते हैं लेकिन जो कीमती चीज़ सेहत है उस पर हम खर्च नहीं करते, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सेहत का ख्याल रखें। और अगर हमारे साथ कोई भी मसला है तो हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दवाखाना अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट में मौजूद होते हैं, अगर आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मसला है, रिंगड़वा है, बादी बवासीर है, खूनी बवासीर है, दम्मा है, खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, तो कोई भी मसला अगर आपके साथ है तो आपको शर्माने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अलशिफा दवाखाने पर तशरीफ लाएं और अपना मसला बयान करें, या अगर आप लाइव प्रोग्राम में अपना मसला पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर 09635114588 पे कॉल कर सकते हैं, 03195523404 पे कॉल कर सकते हैं। हकीम साहब, एक कॉल आ रही है, लेते हैं कि कौन साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
4: मैं जी शेखुपुर से कर रहा हूँ जी।
0: जी जी, अपना नाम बताएं।
4: मेरा नाम है फतेहुल्ला।
0: फतेहुल्ला साहब शेखुपुर से। फतेहुल्ला साहब, क्या मसला है? हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे?
4: हकीम साहब, ये मेरे तकरीबन 4 साल हो गए मेरे घुटनों में दर्द था।
0: घुटनों में दर्द है जी?
4: घुटने में दर्द था, तो फिर ये दर्द यहाँ इसी जगह दूसरा हकीम नहीं था
0: जी जी वाला। जी जी,
4: उसके बाद 3-4 दफा दिया लेकिन कोई दफा का नहीं हुआ।
0: अच्छा,
4: मुल्तान गया, मुल्तान में मैराई किया, मैराई में उसने बताया कि आज कोलेस्ट्रोल 213 है
0: जी।
4: और यूरिक एसिड तकरीबन 6.5 है।
0: अच्छा,
4: ठीक है जी।
0: जी जी,
4: अभी ये गुटे तो पिनकिलर की बहुत सी गोलियां इस्तेमाल की, हकीमों वाले इस्तेमाल की,
0: جی جی
4: لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا
0: جی جی
4: ابھی تو گھٹنے تو علیحدہ ابھی مونڈا نہیں دایا مونڈا

0: जी, कंधों में भी दर्द हो रहा है?
1: कंधों में दर्द है, गर्दन भी दर्द होता है, जब सोया हो तो भी दर्द होता है।
0: आपकी जी फतेहुल्ला साहब, आपकी उम्र कितनी है?
1: उम्र तकरीबन 58 साल है जी।
0: 18 साल आपकी उम्र है, यानी क्या
2: 58 साल,
0: 58 ईयर्स, ठीक है जी।
1: 58 साल उम्र है
0: जी जी।
1: और ये मुल्तान की है, उसने तकरीबन एक महीने की दवाई दी, कोई फर्क नहीं हुआ।
0: ठीक ठीक,
1: दोबारा आ जाए, लेकिन एक महीने में कोई 19-20 का फर्क नहीं हुआ
0: जी,
1: तो मैं फिर दोबारा नहीं गया।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये माशाल्लाह ये टीचर जो मैं इसकी प्रोग्राम अक्सर सुनता रहता हूँ
0: जी जी,
1: यानी जी की बात से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतासर हूँ कि पास ले जाऊंगा इंशाल्लाह।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बाद मरीज ऐसे आ जाते हैं ना
0: जी जी,
1: तो कह दे कि मेरी आंखों की तकलीफ है
0: जी,
1: तो ये नहीं कहते आज मेरे पास आंखों की इलाज है, वो जिसके पास जो इलाज है उसको वो बताते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये माशाल्लाह इसकी बातों से मैं बहुत मुतासर हूँ, अगर उसके पास कोई ऐसी मुनासिब हो, मेरी कमर में भी दर्द हो रही है, घुटनों भी, मोंडे में भी
0: जी जी। फतेहुल्ला साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है फतेहुल्ला साहब कि आप कोई वजन का काम तो नहीं कर रहे, काफी वजन तो नहीं उठा?
1: ठीक करूँ जी, ठीक करूँ,
0: अच्छा
1: बैठा रहता हूँ
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: अभी स्कूल पे जब जाता हूँ तो मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता।
0: ठीक है फतेहुल्ला साहब,
1: तकलीफ होती है बहुत
0: जी जी, आपका मसला हकीम साहब के सामने रखते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत
1: पड़ता हूँ तो नहीं कर सकता।
0: अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, हकीम साहब के सामने आपका मसला रखते हैं, अल्लाह ताला आपको जो है सेहत अता
1: फरमाए।
0: हकीम साहब फतेहुल्ला साहब थे
2: जी जी,
0: शेख उतार से, कहते हैं घुटनों में दर्द है, कोलेस्ट्रॉल भी काफी ज्यादा आ रहा है,
2: यूरिक एसिड भी इनका बढ़ा हुआ
0: है, तो क्या करना चाहिए इनको?
2: देखिए, तो पहली बात है कि वो टीचर हैं, भाई से एहतराम है, भाई से इज्जत है, और टीचरों की ही बदौलत हम भी इस जगह पे मौजूद हैं, वरना शायद हम ना होते।
3: टीचर एक बहुत रिस्पेक्टेबल।
4: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
5: Radio Amal.
6: Radio Amal.

0: ओके सना बिल्कुल सही। फर्स्ट टाइम लिखे कलर गुरु सुख देर से कम से नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम
1: वरहमतुल्ला
0: का कैसा रंग चंगा वादा माशाल्लाह माशाल्लाह मैं तो चंगा वादे तू सुना तू चंगा वादे मजा कर मीठी मीठी गालियां अच्छा तू अकेले सुन दो तू अकेले जो ना सुन दो लोगों को मशवरे दें दे नहीं सी
1: जी मशवरे देने शैम्पू इस्तेमाल करो ते तेल इस्तेमाल करो ते क्रीम इस्तेमाल करो ते दाना वास्ते इस्तेमाल करो ते बड़ा मजा करे
0: अच्छा मजा करे ना बताए
1: जी जी
0: तू इस्तेमाल करें नहीं यानी ऐसे अब्दुल हदी तू इस्तेमाल करें नहीं वासी वासी वासी वासी कमाल करें ना बदें ऐसे हाँ
1: सियां तो इन्हें
0: क्या सी
1: मैं कुछ सियां तो इन्हें
0: हाँ ना तू मैं तू कुछ सियां देने ऐसे तू अब्दुल हदी काल करें देने ऐसे गरा शेबास कर
1: हाँ वो सियां है तू
0: नहीं नहीं वो नहीं ऐसे स्टार्ट तू स्टार्ट कुछ सियां है ते कुछ बदाम तो इस्तेमाल करें मजा तो करें मूंगफली भी इस्तेमाल करें
1: हेलो
0: जी जी जी जी क्यों
1: मैं कोई सरायकी वाला गाना भी सुना दे
0: ओके से इंशाल्लाह कोशिश करें देने से सरायकी का गाउन भी जो है ना प्रोग्राम बीच शामिल करें सो नो टेंशन जिंदाबाद अब्दुल हदी पाइंदाबाद डेरा मनन सी अब्दुल हदी डेरा मनन सी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सी अब्दुल हदी वो सर जी दो गेरा शिबाज ने सी डेरा मनन सी अब्दुल हदी डेरा ज्यादा मनना खुशहाल उसे शेख दरमन शेख इज्जत मन

0: जी शाहजहान पंजाब से उमर वाली से हैं और कहते हैं कि कलूर कोर्ट से मैं बात कर रहा हूँ। मैसेज किया है, कहते हैं कि केसन शिफाय दर्द तेल वाह वाह क्या कहने हैं और मेरा दर्द इस आयल ने खत्म किया। राजा गफूर के पास हमारा ये आयल मौजूद होता है जनाब पांच गिराई के अंदर और कहते हैं कि मेरा दर्द खत्म हो गया। ठीक है जनाब, इनको कोई भी जो भी दर्द था इन्होंने कहा कि शिफाय दर्द वाह वाह क्या बात है इसकी और मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है शिफाय दर्द आयल से। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। आगे जनाब कॉल, ये दूसरी कॉल है जो कि ड्रॉप हो रही, नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो शाहजहान भाई आपको सेहत मुबारक हो केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के साथ और स्पेशली जब हम इस ऑयल की बात करते हैं, एक बहुत ही प्यारा ये ऑयल और इस जैसा ऑयल आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलने वाला। ठीक है जनाब, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। बाजू का तब चीजें लेने जाते हैं, एक दुकानदार के पास नहीं है ना कोई चीज, शैम्पू नहीं है केसन का, वो बोलेगा मैं और दे दूं, क्रीम केसन की नहीं पड़ी, वो बोलेगा मैं कोई और दे दूं। ठीक है जनाब, वो क्या क्या कहेगा कि उस जैसा है मेरे पास, लेकिन जब शिफाय दर्द की बात आती है तो इस जैसा कोई नहीं है। कोई दुकानदार ये नहीं कह सकता कि केसन का शिफाय दर्द नहीं है तो और उसके मुकाबले का है, क्योंकि इस जैसा कोई ऑयल और नहीं है मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल हवाल है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। कौन है हमारे साथ?
1: मोहम्मद शहजाद टांग से सर जी।
0: मोहम्मद शहजाद भाई टांग से बात कर रहे हैं। शहजाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, आपको अपने शो में वेलकम करते हैं, पहली दफा आप आए हैं माशाल्लाह।
1: जी मेहरबानी सर जी, और सुनाए क्या हाल हवाल है?
0: बिल्कुल जी ठीक हूँ। और प्रोग्राम हमारा सुन रहे थे या आजकल में शुरू किया सुनना आपने?
1: सर जी आजकल ये तकरीबन हफ्ता हो गया आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: अच्छा जी, हफ्ता हो गया है, तो एक हफ्ते में कोई हमारा जादू आपके ऊपर चला है कि नहीं चला?
1: जी हाँ सर जी, जादू तो बात आपसे पूछने वाले थे वो ताकत प्लस के बारे में।
0: अच्छा ठीक है, पूछे।
1: और आपका जो फार्मूला नया आया हुआ है सर जी,
0: स्किन क्लियर फार्मूला बिल्कुल आया हुआ है
1: जी? जी हाँ, हाजी साहब तो बिल्कुल गुजारा नहीं करता। आज मैं गया था हाजी साहब के पास।
0: अच्छा जी, क्या कहते हैं उदाहरण?
1: हाजी जरबा खान, वो बिल्कुल वही फार्मूला आपको 500 रूपए पे दे रहा था।
0: 500 रूपए के ऊपर?
1: हाँ,
0: 450 कीमत है उसकी।
1: वो कह रहा था 500 से कम नहीं है।
0: नहीं झूठे, मैं उसे कॉल करूंगा शो के बाद। 450 रूपए कीमत है फार्मूले की।
1: मेरा थोड़ा मुजीब के साथ ऐसे थोड़ा गर्म भी हो गया, मैंने कहा यार आप बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करते। वो कह रहा था कि हमें यार पीछे से ताबिश भाई जो है ना वो डिस्काउंट हमारे साथ नहीं करता, हम कैसे करें?
0: कैसे नहीं करते? उनको जो मैं बात करता हूँ उनके साथ, उनको क्या हम डिस्काउंट नहीं करते? ये तो मैं आज उसे बात करूंगा। आप फिर और कुछ लिया आपने वहाँ से या नहीं लिया?
1: नहीं, मैं मेरा सर जी कल इंशाल्लाह ये खान तैयारी है ना, तो मैंने कहा मैं ताबिश भाई की खुद दुकान पे जाऊंगा, वहाँ से शॉपिंग करूंगा, बिल्कुल लेता नहीं हूँ।
0: बिल्कुल आए भी आपको खुश आमदीद कहेंगे। और अभी हमने एक दूसरा सेल पॉइंट उधर बना लिया है, वहाँ पर हमने ऑफर भी लगाई है, 1000 के ऊपर आपको एक हमारी जो फेयर लवली क्रीम है ना केसन की, जो लवली फेस आई है, ठीक है जनाब, 200 रूपए की, वो आपको फ्री मिलेगी और साथ में डिस्काउंट भी होगा बिलाल मार्केट में, नसीम जनरल स्टोर जो है बिलाल मार्केट के अंदर।
1: नसीम जनरल स्टोर बिलाल मार्केट जी। हाँ, ये सर देखिए
0: ये कल इंशाल्लाह उनके पास सामान पहुंच रहा है और हम उनको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केसन के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो एक हम ऑफर वहाँ पर भी लगा रहे हैं कि वहाँ पर आप 1000 की चीजें अगर लेंगे, ठीक है जनाब, तो
1: है,
0: आपको वहाँ पर चाहे तो आप 200 रूपए वाला साबुन फ्री ले लें मिल्की, जो कि आगे सर्दियों के दिन इस्तेमाल बहुत होता है, और या फिर आप हमारी लवली क्रीम जो है ना वो फ्री मिले। अच्छा, जो दुकानदार हजरात वहाँ से जब 5000 की चीजें खरीदेंगे तो उनको दो चीजें वहाँ पर फ्री मिलेंगी, दुकानदार जितने सुन रहे हैं, ठीक है जनाब।
1: अच्छा।
0: तो यानी कि आप लोगों के लिए हमने अब थोड़ा सा पॉइंट ऐसा बनाया जहाँ पर लोगों को अब जो है बचत मिले, और ये तो गलत बात है, 450 कीमत है फार्मूले की और वो क्यों 500 रूपए का दे रहे हैं? अब नजायज फायदा तो नहीं उठाना चाहिए, अगर केसन रिजल्ट दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुकानदार अपनी मर्जी करे।
1: जी जी जी बिल्कुल, तो मेरा सर जी ख्याल था, मैंने कहा मैं डी खान जाऊंगा खलील ताबिश भाई आवान से, खुद उसकी दुकान पे जाऊंगा अकबर प्लाजा से,
0: बस आप
1: तो जो शॉपिंग है। हाँ। मैं कल इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाऊंगा।
0: बस आए जनाब, आए, वेलकम करेंगे आपको, बहुत शुक्रिया शहजाद।
1: ठीक है ना,
0: ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच जी। केसन का जो स्किन क्लियर फार्मूला है भाई, एक ऐसा अमेजिंग किस्म का फार्मूला, उसकी पैकेजिंग सारा कुछ इस तरह के, दुकानदार उसको 1000 रूपए का भी बेचेंगे, ठीक है जनाब, लेकिन इस आपको रेट क्यों बताते हैं हम यहाँ पर, क्या आप लोगों के साथ धोखा ना हो, लोग आपको लूटे नहीं यार, हमने भी इसकी कीमत जो है हम इसकी 600 रखने वाले थे, हमने इसको 450 आप लोगों के लिए किया है कि भाई एक महीना इसकी कीमत ये 450 रहेगी, और जब लोगों को समझ आ जाएगी कि वाकई यार ये तो कोई काम की चीज है, ठीक है ना, फिर इसकी कीमत बढ़ाएंगे। एक महीने तो हमने आपको 450 का देना है। केसन स्किन क्लियर फार्मूला। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, हाल देख खलील भैया।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी यास्मीन भाजी सारी जरिए सनल मौजूद, इनकी भी हाल है। चंगे मैं देवे ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है।
0: शिफाए दर्द मिल गया तो आपको कि नहीं मिला, पहले मैं को ये दसो।
2: जी जी जी जी आज गए हैं।
0: अच्छा जी ठीक है।
2: बहुत सारा सामान खरीदा
0: है। रियायत की थी मैं कि नहीं की थी? अल्लाह मैं पहले
2: तू मेरी गल तो सुना ना। ऊन आके 300 रुपए करीब में नवा फार्मूला जरा है।
0: 600 रुपए?
2: मैं ठीक सुनो ना, मैं ठीक है मैं सुन भी रही हूँ ना। मैं 150 रुपए अखिले 100 रुपए की मत बोली। मैं भाई मैं जरिंद को वीए
0: देखो दुकानदार हूं के करने पैन उन्हों को पता है की अच्छी क्या है, वो पहले को उसे रेट ते बेचना चाहते कोई भी क्रीम ऐसी कौन नहीं जानी। 4 सीरम होवे तो अपनी मर्जी तो रेट कोई 600 देव लग गए, कोई 500 आने लगे, 450 रेट
2: राशन
0: केसन किदा वे सारा है जी।
2: जी जी छोटा वा तो सेंट नहीं अखबार वाला मेरा बेटा ना लेना।
0: अच्छा अच्छा ठीक है जी।
2: मैं 3200 का सामान ही को एक फ्री देना।
0: 3200 का बढ़िया ठीक है। अगर तुसे चिंची ते भी आओ, अगर तुसे चिंची ते भी आओ, मेरा ख्याल है तो आवन वंजन 200-400 लग वंजिया ठीक है। तो इस जाती है क्योंकि सारा जरा पेन परफ्यूम है वो 250 रुपए का है, 280 तक की भी ले सकते नो परफ्यूम।
2: मैं आखा ना मैं केड़ा सामान है मेरे बेटे को ए तुम फ्री नहीं देना तो 200-250 तला तू आखा ना 250 का को केसी नहीं बजे 250 ना लेना।
0: बस
2: मैं के नहीं दसो भैया मैं के 3200 रुपए खाली नहीं मैं दिते 3200 रुपया पूरा दे दस
0: 3200 पूरा। देखो ना हुन लोगों ने कंप्लेंट
2: की। मैं तक नंबर लिख देना तू ना रास्ता करे। मैं के तू मेरे को नंबर नहीं लिख दे नंबर वाप दे सेंडा बैठा लिख जरूरत ही को नहीं मैं के देवान
0: नंबर फार्मूले दी कीमत तो सुने ना 600 तो बेचन लगे वाला तो कोई दयाद करे सही।
2: मैं के भैया ने दसावा जा तो पता होवे ना ये लोगन तो पता होवे सही।
0: बस मैं लास्ट टाइम ही गाल की थी ते आज इने लुहा बंदा ना मैं गाल करे ना जेरे की इन रेट दोते शिया दे बैठे।
2: मैं को 550 ते ला दे सा। मैं के मैं कुहार से रेट ना पता ते दसावा दी जरूरत ही कोनी।
0: 550 की ला दे ते जेरे 450 कीमत ना उसे
2: आखे ए काम खराब सारा की थी बैठे। मैं तो ना के महीने वास्ते 450 बाद ही रेट ज्यादा थी।
0: हां बाद ही ज्यादा थी सी ओ भी अगर तो सर लोगों ने मोहब्बत दिखाई तो इको ठीक ठाक लोगों ने किदा थी सकदा सा इंक्रीज ना भी करूं ठीक है। तो इंदो तो होंदे ना कि अगर अस सोची पए के भी असा 5000 क्रीम बेचनी है तो सारी 7000 बिक दिए ता सो वो प्रॉफिट बुला के थी सकदे लोगों को वापस करूं तो रेट को इंक्रीज ना करूं ते एवे थी सकदा पॉसिबिलिटी है ना। लोगों ने जितनी सपोर्ट होंदी है असा उनके मुताबिक अपनी पॉलिसी को चेंज करने होंदे कोई ऐसी गल कोनी। लेकिन मैं उनों को दसे भी है कि महीने वास्ते जे रहे ना इंदा यो रेट होसी अगले महीने होसी ते चेंज करे सो
2: नहीं
0: 400 को استعمال کر کے جناب فارمولا کیسن کا جو سکن کلیئر فارمولا آیا ہے, جس طرح میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ شفا درد جیسا کوئی اس کا متبادل نہیں ہے. کوئی بھی دکاندار آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی وہ نہیں ہے تو یہ لے جاؤ, کیونکہ ان کو بھی بتایا کہ بھئی یہ الگ سے ایک کلاس ہے, اس جیسا کسی اور کمپنی نے نہیں بنایا ہے. اسی طریقے سے فارمولا جو ہم نے لانچ کیا, اس کا بھی کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کیسن کا فارمولا اگر نہیں ہے سکن کلیئر تو کوئی اور لے جاؤ, کیونکہ کسی بھی کریم کے اندر چار چار سیرم نہیں ہے, ایک سیرم ہوتا ہے, اور ہم نے چار پاورفل سیرم ایڈ کیے ہیں. ایم بی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آج تو سر جی کیسن شفا درد نہ لوگ درد بنے دے بیٹھے دے.
0: ہاں صحیح, درد
3: تے لوگ ہی اپنے درد سنے دے بیٹھے نا.
0: ہاں جی درد والا پروگرام ہے, اپنے درد سنو کلیل بھائی کو.
3: جی جی جی جی جی,
0: لوگوں کو دکاندار کو بھی ظلم نہیں کرنا
3: چاہیے,
0: ایسا ہی ایک ریلیف دینے ہیں کسٹمر کو, تو وہ ریلیف کسٹمر تک پہنچنا چاہیے. میں پرسو پہاڑ پوری سارا وزٹ ہے, میں اتر اٹھا سی جی ساری کولڈ کریم ہے نا, وہ دکاندار 250 ریٹ لکھ پی آئے. میں کیوں بھائی کسی 250 آخسو تو 200 مل سی. میں آ کے نہیں بھائی 200 ان کی قیمت ہے, تو 250 تو آخنا لگوان دے سکتے بھائی, تو اپنی طرف کیویں لکھ سکتے بھائی کہ 250 قیمت ہے. 200 قیمت ہے اگر نہیں ہے کہ بھائی لوگ رعایت کروا دے. میں کہ یار لوگ 100 روپے رعایت کروا سی, 200 دے وچ 100 روپے یا 20 روپے چھوڑ سکتے بھائی. کولڈ کریم جی ساری ہے صحیح, یعنی کہ 200 روپے قیمت ہے نا, تو اون تے 250 روپے لکھی پے, تو میں کہ صحیح ہے
3: بڑی محبت کروں.
0: خیال اگر نہ کرے سن تو سارے کو آخری حل یہ ہو سی کہ کیسن شاپ ڈیرا علی کار, کیسن شاپ پہاڑ پوری چی بن ویسی, کیسن شاپ ٹان کی بن ویسی. ہے جی دوجا حل یہ ہو سی, اگر لوگوں کو پہنچاونا چاہوں اساں, اگر ایویں مطلب حالات اگر سیٹ نہ تھے تے لوگوں کو صحیح ریلیف نہ ملا, کیونکہ دکاندار بالکل جائز منافع کھاوے جڑا ہوندا ہے پیا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایکسٹرا نہیں گننا چاہیے.
3: یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی, یہ تو ٹھیک نہیں,
0: یہ ٹھیک نہیں بالکل. بیا تو
3: سر جی میں وہ اس کو یاد کی تھی ہم نے فتح خان کو انتقال دے جی اوندا فیڈ بیک ہے, میں بڑا خوش تھا میں سچی گا.
0: بالکل ٹھیک ہے کہ ماشاءاللہ
3: شفا درد دے بارے یاد آتی ائی نا سر, میرے جنگا پہ جواب دے گئے ہاں, تے وہ تصدق کا کروں چن کولی مطلب دی ہوں حاضر رہی.
0: جی جی بالکل,
3: شفا درد استعمال کی تے تے ہن اوندا بیان سنا اوی او اکھوں میں اتنا مطلب ٹائٹ سیٹ تھی گیا میں.
0: ہاں ہاں,
3: تے ہن
0: پٹھا کو طاقت دینا ہے, ٹھیک ہے سر, تو جی پٹھا طاقت آدھی نا بندے دی سستی ختم تھی ویندی ہے, ٹھیک ہے, انرجی آ ویندی ہے, کھچو پٹھا دا ختم تھی ویندا ہے, اکڑن ختم تھی ویندی ہے, ٹیشو نرم ملائم تھی ویندے, تو بندے جان آ ویندی, سوزش ختم تھی, بیسیکلی سوزش درد دی وجہ ہوندی ہے, خون دا رک وجنا اے درد دی وجہ ہوندی ہے, جنہاں سارے مسائل کو حل کریندا ہے کیسن شفا درد آئل.
3: جی ہاں بالکل, بس میں آپ ہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ سنتے پین بالکل کیسن شفا درد اصاف استعمال کیتا ہے, لوگوں کو بھی ٹیسٹ کرایا ہے, سارے مطمئن ہیں. جی کو اگر جوڑاں دا کمر درد, گردن درد, یا ایڑیاں دا درد, یا تلواں دا درد تھی, یا رنگن والا درد تھی, یا کہ کو فالج لکوا سی آیا ہے, یا مطلب اس قسم کے جتنے درد ہیں نا سر, یہ اسیر اعظم ہے. واقعی سر
0: اسیر اعظم ہے جناب, اچھی طریقے سے دس دیتے تو کو میں تھوڑی صحیح کٹ گئی دیے.
3: ماشاء اللہ بالکل, یہ استعمال کریں اگر کوئی میں درد کرے کوئی, تو بالکل چاہتے جن فتح شیر علی فتح خان علی کار وہ اسے چوکے چھکے مرے سے ہوں.
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ, اتنا طاقتور سارا تیل ہے الحمدللہ, آئل ہے,
3: سارے سارے سلام ساری ساری حاضری
0: کی, بہت شکریہ جناب. ایم بی صاحب پاٹ بورڈ سے موجود ہیں, اور ہمارے یوزر ہیں بھائی یہ سارے. ہاں جی.

इतना बहुत शुक्रिया स्वीट वाली दूर अदन इतने स्वीट सी पोइट्री करने का। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आज हैदर मेडिकल स्टोर पे गई थी तो उसने मुझे कहा कि स्किन क्लियर फार्मूला और लवली फेस दे दें। उन्होंने मुझे दी, जब मैंने पैसे का पूछा तो कहा 900 के हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, भाई ने बोला है कि 450 का स्किन क्लियर फार्मूला है और 250 का लवली क्रीम है। तो कहता है कि पता करके बता दूंगा, 900 की आप बातें करें कितने का। अच्छा यार क्या सीन है। अच्छा इस दफा हमसे भी मिस्टेक हुई है कि इस दफा रिटेल मेंशंस नहीं है हमारी पैकेजिंग के ऊपर, और इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही है। और ये लेकिन भाई इतना तो कोई दुकानदार पागल नहीं है, ठीक है जनाब, कि जिसको पता ना चले कि भाई उसको चीज कितने की आई हुई है, उसने आगे बेचने कितने की है। तो हैदर भाई वैसे अच्छे इंसान है, वो ऐसा करते नहीं है। वो मुझे कल उन्होंने कॉल वैसे की थी, उन्होंने कहा था कि खलील भाई क्यों रेट नहीं मेंशन किया आप लोगों ने, हमारे लिए मसला बन रहा है। एक फीमेल जो है वो नाराज होकर चली गई है, बिल्कुल आप ही हो सकती हैं वो, ठीक है ना। और वो फ्लांग कह रही थी रेट का नहीं था पता, तो बहरहाल वो उनसे मिस्टेक हो गई होगी। लेकिन मैंने कल उनको लेटर भी इशू कर दिया है तमाम दुकानदारों को, ठीक है जनाब, और कि इनकी डिटेल्स क्या है, क्योंकि मेंशन नहीं है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम उसमें आ रही है। चूंकि प्राइस हमने फिक्स नहीं करनी थी ना, इसलिए नहीं फिक्स की, क्योंकि हमने ये ट्रायल के ऊपर आप लोगों को फार्मूला दिया है, ठीक है जनाब। तो जब फिक्स इसकी रेट हो जाएगा, इसका फिक्स रेट क्या करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है जनाब। जितनी ज्यादा आपकी मोहब्बत हमें इस फार्मूले के ऊपर मिलेगी, केसन फार्मूले के ऊपर, हो सकता है हम इसको 450 ही रखें, इसको ना बढ़ाएं, ठीक है जनाब। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मोहब्बत दिखाते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। और हैदर को मैंने बता दिया आप, अच्छा जी, और हैदर मेडिकल स्टोर

0: भी यही कह रही है कि भाई 900 का हमें दे रहे हैं दोनों चीजें। ये दोनों चीजें जो है स्किन क्लियर फार्मूला जो कि रात के लिए है 450 का है, ठीक है जनाब, और जो डे टाइम क्रीम है लवली क्रीम जो हमारी है वो 250 रुपए की है। तो कुल मिला के कितने बनते हैं, 700 रुपए बनते हैं। 700 रुपए में आपको दोनों चीजें मिलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि आप के लिए कोई ना कोई तरतीब बनाते हैं ताकि आपकी ये मसला हल हो जाए, ठीक है जी। नाम इन्होंने अपना नहीं लिखा, अननोन हमारे यूजर हैं जो भी हैं। फिर से जाइएगा हसीब के ऊपर जाएंगे तो फिर से बता दूं, रेट हम हमेशा बताते हैं और इसलिए बताते हैं कि आपको धोखा ना हो। जो केसन का स्किन क्लियर फार्मूला आया है वो है 450 रुपए का, ठीक है जनाब। और इसके अलावा जो लवली फार्मूला है जो कि दिन को लगाने वाली क्रीम है, इतने ज्यादा लोग हमारे जब इस लवली क्रीम को देखते हैं ना तो कहते हैं यार आप लोगों ने कमाल कर दिया, सेम आपने फेयर एंड लवली बनाकर और प्राइस उससे कम रखकर ना आपने दिल जीत लिए हैं और ये आप पूरी नहीं कर पाएंगे। हर दुकानदार हमें यही बात कह रहा है, आप ये प्रोडक्ट पूरी नहीं कर पाएंगे जो क्वालिटी आप लोगों ने दी है और जो प्राइस आप लोगों ने रखी है। जनाब टाइम हमारे पास खत्म हो गया है और आप लोगों के मैसेज रही से हिम्मत से मौजूद है और इनका मैसेज भी है और कहते हैं कि ताकत प्लस का बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला है इश्फाक भाई को एंड भाई आज मुझे कल दूसरी ताकत प्लस जाके मैंने लेनी है। सोनिया आप ही भी हमें कॉल कर रही है लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया है जनाब।
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Radio Aman.
3: زوانا بیا سوچونو کې ناستې خدای دې خیر کړي
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
3: اوهو پریشان کېږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
4: رفی جانی دا څه شی وي
3: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي
4: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
3: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404
5: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
6: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونې علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارک النساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-5523-404

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 डांकिंग नशिया। हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: आप ऑर्डर करके आप खा सकते हैं।
1: अच्छा, फिर वो नुकसानदेह नहीं है। एक कॉल लेते हैं
2: जी सर।
1: अस्सलाम वालेकुम जी।
3: हेलो
1: जी, जी आपकी आवाज आ रही। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: हम कहाँ से बात करते हैं
1: जी? जी आप नाम बताएं अपना।
3: मेरा नाम मोहित है, मोहित बरकी।
1: मोहित बरकी साहब, आपके साथ क्या मसला है? हकीम साहब बैठे हुए हैं, अगर आपने सेहत के हवाले से
3: सही नहीं आता
0: बस।
1: अच्छा चलो ठीक है,
0: मिलाते हैं।
1: अच्छा हकीम साहब, बात हो रही थी तिब के हवाले से।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आपने कहा कि जड़ी बूटियों का भी यानी के साइड इफेक्ट है।
0: बिल्कुल,
1: हम उनको जानते नहीं है कि इनका इस्तेमाल किस
0: इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मिकदार में करना है और इसका तरिया क्या होगा। अगर एक बिलफर्ज है, एक बूटी का कोई असर नेगेटिव आता है तो उसका तरियाक आप क्या करेंगे, इसके बगैर आप इस्तेमाल। हाँ ये जरूर है कि कम से कम इतना नुकसान ना हो
1: जी।
0: लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं। ये जरूर है कि आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मर्ज को मुस्तकिल तौर पर आपकी बॉडी से खत्म कर देगी।
1: बिल्कुल,
0: ये तो है। और जहां तक रहा एलोपैथिक का, तो एलोपैथिक में जाहिर है बेस उसकी जो है, या इनकी कह लें एक सादी जबान में या झटका जबान में, कि इनकी माँ हिकमत ही है, यूनानी मेडिसन ही है, हर्बल में जड़ी बूटियां ही हैं। उन्हीं पे रिसर्च करके, उन पे जिद्दत दे के, उसी से एलोपैथिक निकली, उसी से होम्योपैथिक आई, उसी से आयुर्वेदिक आए, उसी से यूनानी भी आई। तो चीज ये है कि हाँ ये जरूर उन लोगों ने मेहनतें की, रिसर्च की,
1: बिल्कुल,
0: और उसको जदीद शेप में ढाल दिया।
1: ढाल दिया।
0: तो अब
1: हकीम साहब कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं।
0: जी जरूर,
1: अगर आपकी इजाजत।
0: नहीं
1: तो
0: नहीं,
1: प्रोग्राम
0: आप
1: में शामिल कर
0: लें, साथ बातें तो चलती रहती हैं।
1: जी डेर असमिल खान से मिसिज काशिफ हैं हमारे साथ, पूछती हैं कि मेरे आधे सर में दर्द रहता है
0: जी,
1: जिसकी वजह से मैं काफी परेशान होती हूँ, लेकिन जब रात होती है तो उसमें कुछ न कुछ फर्क उसमें महसूस होता है, लेकिन दिन को काफी ज्यादा होता है।
0: देखें ये माइग्रेन का होता है, या दर्द शकी का, या आधे सिर का दर्द, ये सूरज तलु होने के साथ होता है।
1: अच्छा।
0: और इसके साथ साथ ये बढ़ता भी है, और जो जो सूरज गरूब होने की तरफ जाएगा
1: जी,
0: इसके इसमें कमी भी आती जाएगी।
1: अच्छा,
0: ठीक है। अब उसमें ऐसा है कि इसका प्रॉपर इलाज भी है
1: जी,
0: तो इसका मुस्तकिल इलाज है जो इस आधे सर के दर्द को खत्म भी कर देता है। वैसे लोग कई टोटके नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए दवाइयां जो हैं वो देसी दवाई में बिल्कुल मौजूद है कि जो आपको इंशाल्लाह विद इन वन या टू डेज में, एक से दो दिन में उसका फर्क आ जाता है।
1: माशाल्लाह, दो
0: दर्द नहीं होगा और वो रफ्तार रफ्तार रिमूव हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: सिर्फ वो दवाइयां जो बनेंगी, वो दवाई ऐसी है कि आप वो जड़ी बूटियां ही हैं, कुटी होती हैं, उसको ये है कि आपने सूरज तलू होने से पहले आपने उसको लेना होता है पानी के साथ, यानी फजर के टाइम आप उठें उस टाइम आप ले लें, और उसके बाद जब सूरज तलू होता है तो इंशाल्लाह आपको दर्द नहीं होगा।
1: बिल्कुल। हकीम साहब, हुरिया बरकी हैं हमारे साथ, वो उनका मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल करती हैं। हुरिया बरकी कहती हैं कि हम जब स्कूल जाती हैं तो अक्सर हमारे मुंह से जो है स्मेल आती है, हालांकि हम ब्रश करके भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मुंह से हल्की सी जो स्मेल है वो महसूस होती है। कोई ऐसा हकीम साहब हमें टोटका बता दें कि हमारे मुंह से जो है खुशबू आए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
0: ये मैदे की तेजाबियत की वजह से भी हो जाता है, मैदा पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। और दूसरा ये है कि अगर आप खुशबू करना चाहते हैं तो आप मुंह में छोटी इलायची डाल सकते हैं, इलायची के दाने डाल लें, उनको आप थोड़ा थोड़ा चूसते रहें तो आपकी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि मुंह से एक इलायची की महक आएगी। लेकिन इसका जो प्रॉपर हल है
1: जी,
0: मुस्तकिल, वो ये है कि आप अपने मैदे का इलाज करें।
1: दांत साफ करने से वो चलो,
0: नहीं
1: दांत तो साफ हो जाते हैं,
0: दांत तो साफ हो जाएंगे,
1: लेकिन जो मैदे की वो
0: जो अंदर से आपकी आएगी ना, वजह ये है कि जब हम कोई चीज खाते हैं
1: जी जी,
0: कल भी इसी पे बात हुई थी कि हम ऊपर से पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक बहुत कुछ डाल देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो जब वो खुराक है वो यकदम नीचे जाके बैठती है मैदे की आंत में, आंत के जरिए जाती है, मैदे में बैठ जाती है। अब वो वहां जाके एक सड़न सी हजम होती नहीं है वो,
1: बिल्कुल,
0: फिर वो पड़ी पड़ी वहां पर उसमें से सरांड आनी शुरू हो जाती है। जब वो उसकी उठते हैं भपके या स्नान के, तो वो स्मेल महसूस होती है कि इसके मुंह से आ रही है। अब उसमें आप बेशक कुछ लोग तो वो माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, गरारे करते हैं, कुछ पेस्टें इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ा कुछ होता है। लेकिन जब तक आप अपने मैदे की इसलाह नहीं करेंगे, आप अपने मैदे को ठीक नहीं करेंगे, ये चीज जा नहीं सकती।
1: वक्ती तौर पर तो चलो उन चीजों से फर्क आएगा, लेकिन ये है कि वो असल जो मैदे का मसला है
0: वो अपनी जगह है,
1: वो अपनी जगह।
0: अब उसके लिए इसीलिए है कि वक्ती तौर पर तो आप इलायची के छोटे इलायची ली, उसके दाने निकाले और मुंह में डाल के चूसते रहे, तो वो काफी टाइम आपका गुजर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और एक अच्छा एहसास आता है उसमें से, जो हवा खारिज हो रही है मुंह से बोलते टाइम, तो वो किसी को बुरी महसूस नहीं होगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये है आरसी इलाज। इसका मुस्तकिल इलाज यही है कि आप अपने मैदे की इसलाह करें, तो ये हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है मसला।
1: हकीम साहब, अक्सर जो बीमारियां हैं, कहा जाता है कि ये मैदे की वजह से जो है वजूद में आती हैं, जब इंसान का मैदा प्रॉपर काम नहीं करता। मैदे की इस्लाह के हवाले से भी जरा हमारे सुनने वालों की रहनुमाई फरमाएं कि हम अपने मैदे को, यानी कि तंदुरुस्त जिसे हम कह सकते हैं, कि कैसे रख सकते हैं
0: कि थोड़ी एहतियात से
1: जी
0: और एक मुतवाजन गिजा से।
1: अच्छा,
0: देखें अल्लाह ताला ने टाइम रखे हैं सुबह दोपहर शाम।
1: बिल्कुल।
0: सुबह का नाश्ता है
1: जी,
0: तकरीबन राउंड अबाउट को चार चार घंटे का फर्क आ जाता है
1: जी,
0: के फिर दोपहर का खाना, फिर उसके बाद रात का खाना। अब यहाँ हमने अपनी रूटीन खुद खराब की हुई है। हम दोपहर का सुबह का नाश्ता जो है वो दोपहर पे ले गए हैं, दोपहर का शाम में ले गए हैं, रात का खाना जो है वो आधी रात को ले गए हैं। तो चीज ये है कि आप मैदा भी जो है उसका भी एक सिस्टम है, एक कुदरत का एक निजाम है, और वो उसके तहत चल रहा है। हम अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते कि हम कहें यार हम अपने खुद अपनी मर्जी से चलाएंगे ना अपने जिस्म को, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है।
1: नहीं, हकीम साहब यहाँ पे मुझे एक पश्तो की मिसाल याद आ गई है, अक्सर चाहने वालों से हम सुनते रहते हैं। वो कहते हैं कि बिजली तारों के आ कुदरत चारों से गोते बनवाए,
0: सही,
1: यानी कि बिजली के तारों में और कुदरत की जो काम है उसमें जो है आपने छेड़खानी नहीं करनी, वरना फिर नुकसान होगा। तो ये भी एक कुदरत का एक निजाम है,
0: कुदरत ने एक मशीन फिट करके हमें दे दी है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी चार्जिंग है
1: जी,
0: वो लाइफ टाइम है।
1: बिल्कुल,
0: यानी हमें अपने आप को उस तरह चार्ज नहीं करना पड़ता जिस तरह मोबाइल को या किसी और चीज को करना पड़ता है।
1: कॉल
0: ले लें, कॉल ले।
1: अस्सलाम वालेकुम जी।
3: हेलो
1: जी, प्रोग्राम सेहत के बाद मशकूर अहमद के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
3: हेलो
1: जी, जी आवाज आ रही है, कौन साहब कहाँ से हैं?
3: मैं वही बस की पश्तो में बात करता हूँ।
1: जी जी
3: तो वही बस की होता ना।
1: जी जी पश्तो से खबर आओ को जी, चब मसला दे जाता सुसरा जी।
3: वही बस की होता ना।
1: जी जी जी जी अच्छा अच्छा ईद भर की तासो प्रोग्राम आरो इंशाल्लाह तासो मसला मुझो जिदा कना हकीम सैयद मशकूर साहब तो पेश कहूँ इंशाल्लाह तासो तबर शही डेरा मनाना जी डेरा मनाना। जो हकीम साहब वहीद बरकी हैं कहते हैं कि ये जो एसोफागस मेरे ख्याल में कहा जाता है, जो नली जा रही
0: जी
1: है
0: जी,
1: मैदे की तरफ
0: जी जी, जलन करती
1: कहती
0: है।
1: इसमें मुझे काफी जलन होती है, इस बारे में
0: देखें। इसके लिए ये कहे, एक तो तेज मिर्चे मसाले
1: जी,
0: खासकर मार्केट की चीजें, बाजार की चीजें
1: जी जी,
0: होटलिंग ये, या ऐसी चीजें जो कि चिकनाई वाली भी हों, थोड़ी मिर्चे मसाले वाली भी हों, ये चीजें ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, ये जलन जाएगी नहीं। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि ये जो बॉयलर है, शेवर मुर्गी है, इससे थोड़ा सा परहेज कर लें। सब्जियों का चंद दिन इस्तेमाल करें और दालें खा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी फ्रूट वगैरह इस्तेमाल ना करें चंद दिन,
1: जब तक ये जलन
0: है। ज़रा मैदे की तजाबियत जब हटती है, ख़त्म होती है, फिर फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें। और दूसरा यह है कि आप कावा पी सकते हैं, ठीक है, उसमें आप अदरक डाल लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें
1: जी।
0: तो दूध, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि तकरीबन 50 ग्राम आप सौंफ ले लें, 50 ग्राम आप जीरा ले लें सफेद
1: जी,
0: और 50 ग्राम आप देसी अजवाइन ले लें।
1: देसी अजवाइन,
0: तो इसको आप तीनों को हम वजन ले लें, बेशक आप 20-20 ग्राम ले लें
1: जी।
0: इनको आप तवे पे पहले भून लें, भूनने के बाद आप इसको पाउडर बना लें और आधी आधी चमची आप तीन टाइम पानी के साथ ले लिया करें, सुबह दोपहर शाम।
1: अच्छा जी,
0: तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जलन खत्म होती जाएगी और तेजाबियत जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन इनको साथ परहेज अपना रखना पड़ेगा कुछ देर ताकि ये जलन मुस्तकिल तौर पर खत्म हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वहीद बरकी साहब थे, हमें बार बार कॉल कर रहे थे, उम्मीद है कि हकीम साहब ने उनको अच्छी तरह नुस्खा भी बता दिया और एहतियाती तदाबीर भी बता दी, इससे जो है उम्मीद है कि आप मुतमईन हो गए होंगे। हकीम साहब जो हैं बहुत ही नाजुक मिजाज और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, देखें कि एक यानी कि पेशेंट के मसले को कितना टाइम उन्होंने दिया और सारी बातें बताएं, वरना आजकल अगर किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास जाएं और आपने बहुत बाहरी जो है वो फीस भी अदा की होती है लेकिन इतना ज़्यादा वक्त कोई नहीं देता, तो अल्लाह ताला जो है हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब की ज़िंदगी में बरकत डालें जिन्होंने जो है सेहत के बारे में ये चराग रोशन किया हुआ है।